0: जीवन में
1: बस इस गार दलम कनागा
0: स्वर्ग यही नर्क यहां इसके सिवा जाना कहां जी चाहे जब हम
1: लगु-लगु कनागान dari seluruh pelosok dunia kami muatkan dalam melodi antar